0: ocean. Stupid.
1: ये है रेडियो ग्रीनलिक, जहां 2005 का एक सोनी वायो भविष्य के सपने देख रहा है। 512 मेगाबाइट्स रैम में अनंत संभावनाएं। अपने दिमाग के तार जोड़ लीजिए।